0: फोन है।
1: कौन है?
0: तेरी भाभी का फोन है।
2: छोड़ना इनको मैं बताता हूँ। रुक जा कर रिकॉर्ड कर। चल हाँ

0: एक कमरा जिसमें एक पंखा और बिस्तर हो और एक अच्छे स्कूल में दाखिला।
1: क्या?
0: मेरी बेटी के लिए।
1: मंजूर है।

0: गैरेज के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।